0: झीले यहाँ सुंदर यूनुंचा एफएम पचास जोटी जोटी
1: अध्यात्म ज्योति।

टमटम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथमा अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन।

झीले यहाँ सुंदर यूनुंचा एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो।
1: FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
2: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजन अर्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत ग्यास अपच यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभर को जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन।

हो तो तुम दरिया रस के, लेकिन दरिया दिल भी बनो। दरिया तो हो लेकिन दरिया दिल भी बनोगे तभी तो हम जैसे गए आए भी कुछ रस पान कर सकेंगे। इसलिए ओ तुझको दरिया दिल की कसम साथी, तुझको दरिया तो हो लेकिन दरिया दिल भी बनोगे तभी तो हम जैसे गए आए भी कुछ रस पान कर सकेंगे। इसलिए

सुन रहे हो ना, पिलाकर एक दो कतरे ही बहलाया नहीं करते, अरे साकी किसी प्यासे को तरसाया नहीं करते, अरे साकी किसी प्यासे को तरसाया नहीं करते, इसीलिए

मजे की बात क्या, रस तो तुम हो साकी यानी रस के देने वाले भी तुम हो, और इस जीव की औकात क्या कि तुम्हारा ये अनुपम दिव्य रस पान कर सके, इसे रस के पीने वाले भी तुम हो। मैं भी तू, साकी भी तू, मैं कश भी तू, रस भी तू, रस का देने वाला भी तू और रस का पीने वाला भी तू। फिर प्रश्न उठता है, जब तीनों चीज तुम हो तो मैं क्या हूं?

मैं तो केवल पात्र हूँ, वरना रस भी तू, देने वाला भी तू और रस का पीने वाला भी तू। आप कहोगे जब तीनों चीज मैं हूं तो मुझे दरिया दिली की कसम क्यों दे रहा है? प्यारे, पीने वाले को दो तीन काम अपने आप करने पड़ते हैं। जो पीने वाला होता है डायरेक्ट बोतल उठाकर थोड़े पीता है, या ये कोई कोका कोला जो पेप्सी थोड़े है, जो पाइप डाल के पिए, क्या करता है? बड़ी बोतल होती है, कोई लार्ज पैक या स्मॉल पैक बनाना हो तो उसे भी एक प्याले की जरूरत होती है जिसमें ढाल कर वो मजे से पीता रहता है। तो तुम्हें दरिया दिली की कसम, इसलिए कि मेरे इस पात्र को देखना मत कि मैं मैला हूं, कुचेला हूं या छिद्र युक्त हूं, मेरा चयन करते ही रहना। और जब तेरे ही मन में आ जाएगी कि इस पात्र से मुझे पीना है तो सारे काम तुझे करने पड़ेंगे। अगर तुझे लगे कि ये पात्र मैला है तो साफ भी तुझे करना पड़ेगा, और केवल सफाई से काम नहीं चलेगा, खाली पात्र को भरना भी पड़ेगा। यानी वो भगवतीय रस जब तू मुझ में भरेगा तो पीने के लिए कोई पाइप से थोड़े पिएगा, फिर उस पात्र को उठाना पड़ेगा। यानी गिरे हुए में पहले जब तू अपना पहले साफ करेगा, फिर भगवतीय रस भरेगा और अपने हाथों से उठाएगा। सारे काम तुझे करने हैं, और खाली हाथों से उठाकर मुंह में थोड़ी चली जाएगी, लबों से लगाना भी पड़ेगा। यानी एकत्व की स्थिति, द्वैत समाप्त, जब स्पर्श हो गया वो भी लबों का,

अब मैं तुझको छक छलका करता, जो मेरे माध्यम से पी रहा है। इसलिए अपना रस जब तुम खुद पीते हो तो तुम्हें मस्ती आ जाती है। और प्यारे मैं तो पात्र हूँ, कितना भी घूट घूट कर पी जाना, एक दो बूंद पात्र में रह ही जाती है। और वो एक दो बूंद भी क्या करती है, मुझे मस्त कर देती है। तू भी छलकता है, मैं भी छलकता हूँ। तू अपनी पीकर और मैं तेरी चंद बूंदों को समेट कर

में दरिया दिली की कसम है। इस पात्र को मत देखना कि मैला है कुचेला है छिद्र युक्त है, जैसा भी है मेरा चयन करते ही रहना। इसीलिए

जब तू मुझे पात्र बना देगा। क्या हो, कितनी तरह की, जितनी तेरे में शक्तियां हैं, जितनी तरह का रस है, अगर तुझे अपने रूप के अमृत का पान करने के मन में आए तो प्यारे मेरी आंखों में आ जाना। मेरी आंखों में जब तुम अपने आप को देखोगे तो उस मस्ती का आलम अलग होगा। तुम्हारे मन में अपने ही गुणानुवाद, अपनी कथाएं सुनने का मन में आ जाए तो तुम मेरी जिह्वा पर आ जाना। ये जिह्वा जब तुम्हारा नाम उच्चारण करेगी, तुम्हारा गुणगान करेगी, उसको सुनकर तुम मस्त हो जाना। और जब तेरे मन में आए कि मुरली बजाऊं तो मैं मेरे कानों के माध्यम से तुम्हें सुनूंगा। इसलिए प्यारे ये मौका मुझे बार बार देते रहना, इसीलिए तुम्हें

कभी आंखों से देखो, कभी कानों से सुनो, कभी जिह्वा से तेरा नाम उच्चारण करो और कभी पग नर्तन, कभी नृत्य करके मैं भी रिझूं तुम्हें भी रिझाऊं, मैं छलकूं तुम्हें छलकाऊं।

स्पर्श का आदान प्रदान चलता ही रहे। कभी ये इंद्रिय थक जाए तो दूसरी इंद्रिय तुरंत संभल जाए, कभी दूसरी थक जाए तो तीसरी फिर क्रियान्वित हो जाए।

0: मेरापन हो जाए, अटैचमेंट अपनापन हो जाए।
1: रेडियो अध्यात्म ज्योति, शांति रेडियो।

0: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।
1: इसलिए ऐसे भी कह दो।

में दरिया दिली की कसम क्यों दे रहा हूं। अनेक तरह के भाव है कि इस कुपात्र की पात्रता को मत देखना प्यारे। दूसरा भाव क्या

अभी गाया जा रहा था ना, नजर लग जाएगी। हाँ, अगर चाहने वालों को तरसाओगे तो यही होगा। ये सोना रूप किसके लिए बनाया है, जलाने के लिए या जलते हुए की आग बुझाने के लिए? ये देखो, हम ईश्वर की प्रार्थनाएं स्तुतियां बहुत ज्यादा करते हैं। ईश्वर साफ कहता है ये डिपार्टमेंट तुम्हारा थोड़े, देवता कम थोड़े हैं जो मेरी स्तुतियां प्रार्थना करते हैं। इंद्र भी कर रहा है, ब्रह्मा भी कर रहा है, सरस्वती भी कर रहे हैं, जितने भी देवता, क्यों उन्हें स्तुति के अलावा कुछ आता नहीं? प्यार करना तो आता नहीं उन्हें। बोला ये काम देवताओं को करने दे, जितनी भी योनियां हैं, मानव को क्यों बनाया है कि मैं भी प्यार और भाव का भूखा हूं। ऐ मानो तुम उससे मेरे प्रति भाव रख, मुझसे प्यार कर। स्तुति और प्रार्थना में क्यों अपना देवताओं से बढ़िया थोड़े कर सकता है? इसलिए ईश्वर भी चाहता है। और फिर वैसे भी कोई खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत, और सभी जानते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। लेकिन चक्कर क्या है, खूबसूरत तो हो और चाहने वाला ना हो तो इस खूबसूरती का फायदा क्या है? डोलता रहे अपने आप खूबसूरत बना, कौन पूछेगा?

वैसे भी कितने परवाने जल गए राज ये पाने के लिए कि शम्मा जलने के लिए है या जलाने के लिए। इतना सुंदर रूप बनाया, चाहने वालों को तरसाते रहोगे या कुछ बूंद बांध भी दोगे?

मानव के लिए मैंने कर्म भी बनाया है, कुछ तो कर कम से कम मेरे लिए। वो कहते हैं ना, तुमसे मिलने की दुआएं और इस गरीब के पास है क्या, बस तुझसे मिलने की हसरतें, क्या ये काफी नहीं। बात तो उसे भी जस्ती है, फिर भी चलो तुम चाहते हो कि मैं भी कुछ करूं, तो फिर तुम तैयार तो हो मेरे होने के लिए, जो चाहोगे वैसे कर देंगे। जुठे आदमी हैं, जुठे सही।

आप कहोगे क्या मेरा भी कोई मूल्य है? हैं? सरकार इतराओ मत, हमको भी पता चल गया कि चाहने वाली ये मानव योनि ही है, हैं? इसलिए जब ये बात समझ में आ गई, जितने तुम इतरा रहे हो हम भी कम नहीं इतराएंगे, जो प्यार करना हमारे वश में है, ये मेरा भी स्वभाव है प्यार करना, इसलिए

तेरे पास है क्या जो मेरे को खरीदने की बात करता है? प्यारे क्या है क्या नहीं जानता मैं, लेकिन संतों से सुना, अनुभवी संतों से, तथा वाचकों की बात नहीं है यहां खाली, कि लो ये खुशखबरी सुनाते हैं आज। क्या कहा आशिकों ने, तेरे प्रेमियों ने, सूफियों ने, लो ये खुशखबरी सुनाते हैं आज कि एवज एक दिल के खुदा मिलता सरे बाजार, कि एवज एक दिल के खुदा सरे बाजार। तो प्यारे दिल वाले तो है, जैसा भी है तुम कबूल कर लो तो ये तेरी दरिया दिली है, वरना एक बात और बता देते हैं, जिस रंग के तुम हो हमारा दिल भी उसी रंग का है। तो रंग में रंग मिल जाएंगे, बात बन जाएगी, रंग तुम्हारा काला मैं दिल का काला, बस इतना ही तो फर्क है।

देखो प्यारे, बात खरीदारी की हो रही है। 2% की हंडिया भी लेने जाते हैं ना बाजार में, ठोक बजा कर देखते हैं। चूंकि हम दिल के काले हैं, तुम रंग के काले हो, तो कभी हमारे दिल के अनुसार कोई गलत चीज ना पेल दो मारे वो। इसलिए सैंपल तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा।

इसीलिए प्यारे तुम्हें कसम दे रहा हूं कि मेरे दिल को मत देखना, जैसा भी है, काला है, कपटी है, अगर तुम्हें ऐसा ठीक लगे तो वैसे रख लेना। तुम्हें काले और कपटी दिल पसंद नहीं आवे तो इसकी कालस और कपट निकाल लेना, अपने आप निर्मल हो जाएगा, तेरे काम का हो जाएगा। लेकिन जैसा भी है इसे तुम कबूल कर लो, इसीलिए

तेरी आंखों में क्या है ये जान लेती है मेरी आंखें, तुझे दरिया दिली की कसम क्यों दे रहा हूं, तेरा स्वभाव है ये तो औपचारिकता है कि तुझे कसम दे रहा हूं, क्यों तेरी आंखों में क्या है ये जान लेती है मेरी आंखें, क्या है तेरी आंखों में सिवाय प्रेम और करुणा के और कुछ नहीं, तेरी आंखों में क्या है ये जान लेती है मेरी आंखें, लेकिन कि आंखों से मेरी मिलकर जान ले लेती है तेरी आंखें, कितना डिफरेंस है तेरी मेरी आंखों में, हो तो तुम बड़े उदार दरिया दिल बनते हो करुणा वाले बनते हो लेकिन काम बढ़िया नहीं करते, मेरी आंखें जान लेती है कि तेरी आंखों में प्रेम और करुणा है, और महोदय तुम्हारी आंखें क्या हमारी जान ले लेती हैं, हम केवल जानती हैं और तू जान ले लेता है, तेरी आंखों में क्या है ये जान लेती है मेरी आंखें कि आंखों से मेरी मिलकर जान ले लेती है तेरी आंखें, तेरा और मेरा किस्सा सबकी आंखों में है उसी दिन से कि जिस दिन से आपस में लड़ी तेरी और मेरी आंखें।

मेरा किस्सा सबकी आंखों में है उसी दिन से कि आपस में जिस दिन से लड़ी तेरी और मेरी आंखें। न सानी अपना रखते हैं ये मशहूरे जहां दोनों, नो सब्स्टिट्यूट नो अल्टरनेट। न सानी अपना रखते हैं ऐसा कोई है ही नहीं ये मशहूरे जहां दोनों। बस दुनिया में दो ही चीज मशहूर है कि वार करने में तेरी आंखें और तड़पने में बरसने में मेरी आंखें। न सानी अपना रखते हैं ये मशहूरे जहां दोनों, वार करने में तेरी आंखें तड़पने और बरसने में मेरी आंखें। तेरी आंखों की चोटों का नहीं डर, अब तेरी आंखों की चोट सहते सहते मैं भी आदी हो गया हूं। जैसे कोई पहले एक दो बार पी ले फिर आदत पड़ जाती है, पिए बिना रह नहीं सकता। पहले छोटी डोज चलती है फिर पैक बढ़ते जाते हैं, पैकों की संख्या बढ़ती जाती है। पुराने जमाने की बता रहा हूं, एक एक बोतलों में आ जाते थे, दो दो बोतलों में। फिर बोलते यार बोतल में भी नशा नहीं है, तो वो बिच्छुओं से डंक मरवाते थे। थोड़ी कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे एकदम, थोड़ी मजबूत हो जाएंगे। और फिर बिच्छू का डंक भी जो है ना आदि हो जाते थे, बोला इसमें भी कम जहर होता है, अब तो सांप लाओ। सांप से डंस मराते थे, फिर उसमें भी सांपों की कैटेगरी, एंड में जाके कोबरा, और कई उसके भी आदि हो जाते थे। बोले यार अब इसका भी डंक जो है ना पूरा मजा नहीं देता, तो डोज बढ़ती जा रही है ना उसकी हैबिट के हिसाब से। तो यानी एंडिंग स्थिति क्या है, कोबरा से भी फिर एक दिन में एक बार दो बार चार बार, और बेचारे कोबरे का एक दिन में जहर ही खत्म हो जाता था। रोज नए नए कोबरा आ रहे, यानी इतना नशा होता था कि बस तो और तेज चाहिए। तो जब कोबरा के काटने का नशा इतना तेज है, तो इस कालिए के काटने का नशा कितना तेज है। हमारी मजबूरियां क्या है, दो ही तो बात है भक्ति मार्ग में, एक ड्यूरेशन एंड अनदर इज कॉन्सेंट्रेशन, के समय कितना हो। जितनी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है नशा और तेज होता जाता है। दो ही बात कि समय की अवधि बढ़ती जाए और कॉन्सेंट्रेशन प्रगाढ़ता बढ़ती जाए, नशा और तीव्र से तीव्रतम होता जाए, तेज और तेज और तेज और तेज। वही बात फिर बातें उसकी आंखों पे आके टिकती है कि न सानी अपना रखते हैं ये मशहूरे जहां दोनों, वार करने में तेरी आंखें बरसने में मेरी आंखें। तेरी आंखों की चोटों का नहीं डर है तो अब इसका कि आंखों से मेरी मिलकर न मैली हो जाए तेरी आंखों। क्यों तेरी आंखों में करुणा है, भले तू वार करे, बड़े प्यारे वार करता है, ये जख्म भी लगते हैं तो ये जख्म कभी भरे ही ना, बस दिल यही करता है ये जख्म बने ही रहे, जख्म नहीं ससुरे नासपुर बन जाए, इनका इलाज हो ही नहीं। इसलिए तेरी आंखों की चोटों का नहीं डर है तो अब इसका कि आंखों से मेरी मिलकर न मैली हो जाए तेरी आंखें। इसलिए हमेशा बिंदु जल से इनको धोता रहता हूं, कोशिश करता हूं अपनी आंखों को धोने का कि मैल निकल जाए जब तू मुझसे नजरें मिलाए। तो क्या मैली मतलब तेरी कैसे होंगी, मेरी वेदना को देखकर कभी तेरी आंखों में आंसू ना आ जाए, ये वेदना ये पीड़ा कभी तेरी आंखों में भी ना आ जाए। इसलिए हमेशा बिंदु जल से इनको धोता रहता हूं कि आंखों से मेरी मिलकर न मैली हो तेरी आंखें। बहुत कुछ प्यारे, ये तो भावनाओं की बातें थी, लेकिन हकीकत क्या है, जो वार तुमने किए भूल मत जाना, वार और चोटिल करते जाना। पहले छोटे से जख्म बनाए थे, अब ऐसे घाव बनाना, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि दिल जितना तेरा बड़ा उतना जितना मेरा बड़ा, घाव उससे भी ज्यादा बढ़ेगा कि उसका इलाज ही ना हो। इसलिए क्यों इस तड़प में भी जो आनंद आया है तेरे घावों के अंदर भी, कि अब ये जी चाहता है कि ये

दुनिया का था। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, और जब ये दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, और जब ये दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे हो गए। क्या अभिप्राय इसका,

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो।
1: One oh four eight.

0: वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है।
1: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स विशाल बजार पसल नंबर 13 न्यू रोड काठमांडू राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सदैव भरी
1: One oh four eight.

0: ओल्ड प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत ग्यास अपच यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभर को जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर लैक्स 16 प्राकृतिक तत्व को संयोजन ले बने को यो लैक्सेटिव ग्रैन्युल्स ले अब मेरो पेटलाई सहज बनाएको छ। बिहान को शुरुआत हल्का महसूस संग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर लैक्स प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत ग्यास अपच र अम्ल पित्त को लागि। मेक योर डे हैप्पी एंड जॉयफुल, पेट स्वस्थ जीवन सरल। एसआर लैक्स नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
3: स्वेटर ज्याकेट कति लगाउन सकेको होला, अलि हलुका भएर हिँड न है।
4: जाडो भएपछि लगाउनु परेन त?
3: खै मलाई त लगाउनु परे छैन त, मैले जस्तो थर्मोकोल लगाउन न्यानो भइहाल्छ नि।
4: ह्या, एक दुई दिन मात्र त हो नि, पछि पछि त कामै गर्दैन नि।
3: मेरो जस्तो पिक्सी चार्जर ब्रान्डको लिऊ न, कहिल्यै मन चिसो बनाउनु पर्दैन, जहिले जिउ तातो राख्छ। पिक्सी चार्जर थर्मोकोल लगाऊ, जाडो फगाऊ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: ಕೋಯಲ್ ಸುಚ್ಚೆಪಾಠ.
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने.

0: अभी अपने सुनत आनी रउआ लोगिन के आपन रेडियो स्टेशन एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज।
1: अभी अपने सुनत पानी रउआ लोगन के आपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी

अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के आपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

से हमके मिले ना घुंडेला, गुरु बना के बना लिहल चेला, हमरा के राम जी बचावे। ससुरा

0: सॉरी सॉरी।
1: हम तोहर इतना ख्याल करी और तू अपने ससुर से भेद करे, एकदम बाप पे गइल बाड़ी, जौने थाली में खाए उहे में छेद करे।
2: देखी बाप मत बखानी, अल्लाह तो ठीक ना पड़ी।

0: मनशान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: अभिन अपने सुनतानी रउवा लोगिन के आपन रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz।
3: अभिन अपने सुनत पानी रउवा लोगन के आपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: शुद्धता नहीं खोजू। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्स मा छ सुन, चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरुको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्स के किन्नुस।
1: जेजे ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी। संपर्क नंबर 5320411 9802076888।
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
2: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है। तो शब्दों की सुंदरता देखें।

0: आदरणीय श्रोता, नित्य प्राणायाम मन्त्र पश्चात आज शनिश्चरबार श्री शनिदेवको यो मन्त्र
1: नीलाञ्जन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम।